0: Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।